0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
1: देवा
2: की जय।
0: इट इज सेड
3: रिकासा
0: देयर इज वन very nice, it will come in this video, but we will see sometimes it will comes.
3: A přijde to i uvidíme na tom videu, jedno, bude to tam.
0: So, after, say to God, and this all like

0: शांति शांति शांति।
1: विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

them in the Pitambar dress, Pitambar like gold, and Bhagavan Krishna used to have Pitambar. And you see, Pitambar is a color of the flame of the fire. So, the Vidyarthi, they are studying, they should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress, and this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, hame to gyanarjan karna hai, paise ki baat nahi karni hai, hum padhenge, paise kamayenge. ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि वो पैसे जो हैं, जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारी विद्या के अंदर हैं, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये, इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है, और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है. इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गाँव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा. बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा. वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए. अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो. ले एक मिनारा 15 लाख अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं. 15 लाख रुपया उठा सकते हैं हम? अरे बहुत. तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है. 15 करोड़ तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहाँ हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ. और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है. जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा. तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम

But from the beginning, not from the end. Not when you go to the university that you start to learn about what is the morality and different ways and so on, but from the beginning. Because now in our science project, let's say, they can teach you how to make TNT, they can teach you how to make the bomb, gun, or whatever. But they will not teach you why to use it and how to use it. Not how to. They will teach you how to use it, but not why not. So this is the basic problem which now we can see in all around the world with all the many all the things terrible that are happening. So because the people have the knowledge how to use the things in a bad way, but they don't have the mentality to decide that this is good or not good. So this thing Swamiji is trying to achieve in this Gurukul, to have according, because the modern education is modern education, we have to have it to be competitive in this world, but still on top of that, Gurudev is trying to put one more layer, which was actually before, even in our country was there, but then now we have these changes in education. But everything is going for the globalization, how the people can move from one place to another. So the children are actually educated in a very short spectrum. Here I had the opportunity to study with one teacher who was, she was brought up in a Gurukul system. And in a Gurukul, they have studied all the Bhagavad Gitas and Ramayana and Vedas and this and that. So they studied everything. So actually, I know, I have first-hand experience that I know that what they were studying, what they were learning in the Gurukul. And our Pushpaji from Jaipur Ashram, from Jaipur Yogsadhana Ashram, which you met many times on webcast, she's also studied in Gurukul, which is a completely different system of study than nowadays, which is very commercialized. So these kind of studies we are trying to give to the people, to the children here, and these children will then hopefully try to improve the status of these villages which is around us. Because the, still the base of the India is in the villages. More than 67% of all population lives in villages. Of course, this is changing, but population, as you know, in India is huge, as I told in the beginning. So we are, Swamiji, trying very hard. It's, of course, very difficult because everybody wants to have computers, everybody wants to study, to have experiments with the chemistry or physics and so on. So this is quite, of course, it's a costly matter to pay to the teachers. If you have good teachers, they require more money. If you have good equipment, this requires money and so on. So that's why we are thankful to all the supporters, all the donators who gave the money for this project of Gyanputra. Ab aapke paas, ab school mein jaate hai, ab school ka samay ho gaya. चालू भी हो गए अब मैंने आपके सामने बैठ रहे तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं एक जगह में बैठ नहीं सकते नींद तो आती रहती है अभी तो 9 बज गए तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है यहां का प्रॉब्लम है जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है एग्जाम तो आएगा दिसंबर में जब एग्जाम आएगा मार्च में एग्जाम आएगा अप्रैल में अभी क्या स्टडी करना तो आप ऐसे कीजिए 365 दिन है आप आज 6 महीने के लिए खा लेना एक दिन में 4 रोटी आप लेते ठीक है सुबह 2 शाम को 2 ठीक है मांगे चलो 5 रहते 6 लेते तो 6 महीने में कितना दिन होगा 180 दिन 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना
900 roti. तो ठीक है, आज सुबह हम बना देंगे भंडारा, 900 रोटी सबको खानी है, फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से, संभव है? इतनी मामूली चीज है, अब क्या है, 900 रोटी खा लीजिए, क्या है, कोई खास नहीं है, 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी, ऐसे नहीं चलता है ना। तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते, पूरी 6 महीने की पढ़ाई कर सकते एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में। अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज, डेली। तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं, हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते हैं, ओपन स्टडी करते हैं, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा? 180 तो हो गया, नहीं हुआ? तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी, आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा, असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं, कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा, पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते, मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना, क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते हैं? कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे, अरे मेरा बेटा 95% आ गया, अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा, पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञान पुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर, एंड वी हैव मेनी आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And
This is just that to see that learning never ends. And learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata, and other Upanishads. So definitely, we are open university, we are open school. Of course, it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwaguruji, Vishwaguru Swamishwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga, and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish. And I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by your work and so on. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu ma kaschidukha.

Good. Thank you. Thank you, and me honyo. Thank you. And you see the all vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the our Gurukul ke bachche jo hai turn to the camera side. Muh dekho, dusre log nahi. All the vidyarthi turn to the. Don't go close to the. Phir chala nahi dikhega beta. Tu idhar se khada ho ja. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस ओके वी विल सी व्हेन इज देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव की हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओम शांति शांति शांति ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिव उर्वारुकम् एव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतम्।

बस अब मेरी तरफ झुक, आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे ये खड़े हो, बैठ जाओ बस, थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, दिख रहे हैं सभी के, नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊंगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख।

समय बड़ी कीमती है भजनो सजनो, मारो एक ही भजन है क्यों आप प्रचार करे सामराई गौ माता रो। ये नर्तन जो तुझको मिला है यूं गमाने के काबिल नहीं है, हर सांस अनमोल हीरा है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। गाय जिंदे जी सेवा कमाए, गाय जिए जीते दूध देवे, दही देवे, घी देवे, गोबर देवे, गोमूत्र देवे, और मरने के बाद भी उसका हड्डी और चमड़ी काम आवे।

0: सब जीव आप समान जाने आप तनो गुण बिना पशु समान अजिया गल तनो मिनख मूंगो जान राखे मिनख पनो। तो गाय जिंदे दी सेवा कमाए मरकर भी काम आए, नर तेरा जिस्म मरने के बाद काम आने के काबिल नहीं है। इंसान को गणित समय को लू टाइम इज मनी, समय ही धन है। क्यों मैं एक भजन रखी हो आपने, इंसान को इंसान होना नहीं आया। हंसते तो सभी खिल खिल पर दूसरों के दर्द पर रोना नहीं आया। बाहर से कपड़ा सभी धोते हैं अपना अंतकण धोना नहीं आया। भर पेट तो सभी खाते हैं आगे के लिए कुछ बोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी मगर आज तक गोना नहीं आया। यानी सद्बुद्धि को नहीं आई, गाय के प्रति आस्था को नहीं आई। भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में। गड़कर के निज देव बिठाया तुम्हारे सीने में, इसको छोड़कर लगे हैं मृग जल को पीने में। अंतर आत्मा को छोड़ भटकते काशी मक्का मदीने में। सुजनो भगवान ने दी ऐसी सुंदर काया तेरे लिए क्या क्या बनाया, पर तू उस दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा। गौ माता के प्रति कोई संत आश्रम में कोई अनाथ आश्रम में कोनी पैसा खर्च रहे, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करे लोग। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, ये मिले अनमोल बिना मोल सत्संग, पर तू इसमें जाने के काबिल नहीं है। बरा ये सत्संग का दरिया नाइलो जिसका जी चाहे, जिगर है दाग पाप का धोइलो जिसका जी चाहे। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, भगवान का कीर्तन कौन करे, सदगुरु का गुणगान कौन करे, अशुद्ध गीत गावे। मुनि बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, अब ये तेरी जीभ प्रभु के गुण गाने के काबिल नहीं है। हाँ सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, नरकगामी होना पड़ेगा। होगा जो तेरा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। फालतू सिर पर बोझ लिए फिरते, बार बार जन्मते और मरते, तेरा मस्तक होगा इतना बोझिल जो संतों के आगे झुकाने के भी काबिल नहीं है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है, पर तूने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तू दुनिया में आने के काबिल नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो। दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो। दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी में जीने का यही तरीका है दोस्तों, नहीं तो खुद उदास रहो और नहीं दूसरों को उदास रहने दो। हो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या काम की जो अपना जीवन नहीं बदल दे। जिंदगी में जीना है तो जीने की यकीन कर, सूरज आसमान पर इसे ले आ जमीन पर। एड़ा सत्य कर्म कर, माता पिता की सेवा कर, गौ माता की सेवा कर, तो सूरज तारा पाऊं चूमे। यूं ब्रह्मानंद समझावे, बार बार नर्तन नहीं पावे, ऐसे सु अवसर को गमावे तो तुम मोक्ष पद पाने के काबिल नहीं है। खूब महापुरुष पधारिया, समय बड़ी कीमती है, टाइम इज मनी एंड मनी इज गोल्ड। अब मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गौ माते की
1: जय हो।
0: साध्वी जो को पधारिया वारू, आप जो मन संचरण करना जो आपने नाम लेवे जो आप भजन सुनता रहे जो साध्वी जी आप खूब भजनी पधारिया, आप अपरा विचार रखी, आप अपरा प्रवचन, आप अपरा भजन। बोलो राम जी महाराज की
1: जय हो। बैठना है दो गावना है दो। जय हो। आप रखना मान है।

तन त्यागी ज्यार मन वो बेरागी सुरत साहेब सू लागी। हाँ तन त्यागी ज्यार मन वो बेरागी सुरत साहेब सू

ए ओलियों दोलियों हंसते घूमता तुरी अठार लग त्यागी हाँ ओलियों दोलियों

0: अनंत कोटि के महापुरुषों की
1: जय हो। अमर वे गया, अमर वे गया।
0: जो मरा श्री अब मन संचालन जो इज्जत दे स्वकृति दे त्यू भजन सुनावता रहे लोग आप प्रेम सुनता रहे जो
1: जय बोलो गो माता की।
0: यूं है गौ माता है ने गौ माता जकारे घर में गौ माता है और जकारे घर में तुलसी को पौधो है जकां के घर गुरु महाराज की मूर्ति है वो ही घर हिंदू धर्म की संस्कृति में सनातन धर्म में गिनती में आवे और जकां के घर में गाय नहीं है तो सुजनो घनी व्याख्या नहीं करूं मैं थोड़ी सी भजन गाऊं नाला ज्यादा है टाइम इज मनी। मैं आप बात बार बार कहूं कि समय धनेर मैं ही ज्यादा बेलड़ा उड़ू दन उचित कौन लागे छोटी सी बात है बड़ी मार्मिक बात है जीवन में काम आवेला। राजा भरतरी जिन टेम रा जोग ले राजपाट ने परित्याग कर दियो राजा भरतरी चक्रवर्ती सम्राट हो
1: जय हो।
0: गोपी चंद और राजा भरतरी मामो भांजा हा तो राजपाट ने उजीन नगरी ने परित्याग कर वन में निकल गो। भगवान भी परीक्षा लेवे स्कूल में बच्चों पढ़े मेरी मास्टर परीक्षा लेवे अर्धवार्षिकन वार्षिकन परीक्षा में पास रहे तो अगली क्लास में एडमिशन है फेल रहे तो एडमिशन नहीं है। तो वीनी तेरे भगवान भी परीक्षा लेवे की वैराग्य सच्चो है या कच्चो है। तो सजनों महीना डोढ़ महीना तक राजा भरतरी ने अन्न कौन मिलियो महीना डोढ़ महीना तक हाँ वो वन में फल फूल जी में और नदी सरिता में पानी पियर भजन करे जिसके लागी नाम की नैन बेन कह देता है। एक दिन संयोग को बड़ी मार्मिक बात है ध्यान एक दिन संयोग भी ने सुको रोटी को टुकड़ो मिलियो चार आंगल वो क्यों आज अन्न देव भगवान दर्शन दिया है आज आप भोजन करा जबकि 45 दिन तक अन्न को मिलियो 45 दिन तक वो प्रेम भी भोजन ग्रहण करन पाचो भजन में बैठो तो भी नगरी को एक शासन करने वालो राजा हो आपरा कामदार ले वन में घूमने वास्ते गियो वो राजा भी राजा भरतरी ने सुको टुकड़ो ने खावता देखियो जन आपरा कामदार ने कियो ओ कोई मगतो है कोई भिकारी है सुकोड़ो टुकड़ो कोई देन किया बढ़िया कहीं टकूनी लाया जो कोई तो खावे इर्दी तो कोई मगतो ही को नहीं भूखा मरे है थे जा इन्हें कह दो के माने राजा के दरबार में चलो माँ के राजा का गढ़ में चलो तन दपाई जिमाई दे वहां भरपेट भोजन करो क्योंकि तुम भिकारी वो कामदार जाए क्यों मारा राजा साहब रो हुक्म आठा को नहीं कोई राजा है लेकिन उसे मालूम नहीं था वो जाए क्यों मारा राजा साहब रो हुक्म है तुम भूखा मरे तुम भिकारी है मैं तो उनका हूँ भिकारी हृदय की जोड़ी भक्ति का देन दान मैं मांग रहा हर वारी मैं उनका हूँ भिकारी मेरी मोक्ष उसी दिन हो गई जब गुरु मिले शुभकारी अब आवे तो मैं सबकी कर दूं चाहे आ जाए जग सारी मैं उनका हूँ भिकारी बात मत ओटला तुम भूखा मरे तू हाल माने गढ़ में जीम ले जन थारा राजा ने पूछ के मने क्यों जिमावो और राजा साहब वो निमंत्रण स्वीकार कौन करे बोध के मन क्यों जिमाओ अरे क्यों कहीं जिमाओ राजा ने धर्म रे जकाऊ जिमावे तुम भिकारी है तुम मगतो है तुम भूखा मरे धर्म रे जन थार राजा ने जाय पूछ के धर्म की माँ कौन है धर्म री माँ कौन है अरे वो स्वीकार कौन कर बो के धर्म री माँ कौन है वो राजा भी बुद्धिजीवी हो बो कि धर्म री माँ है दया मन थर माता दया आई जन तुम्हें जिमाऊ वा जन तर राजा ने और जाए पूछ के जन धर्म रो बाप कौन है अरे राजन वो माने कौन बो के धर्म रो बाप कौन है जन वो सोचली मन में आप इन्हें भिकारी समझा भिकारी तो कौन है आ तो चीज तो कोई हीरो तो कोई दूसरो ही है जाए देख के वीर नूर पहली मरा सीरियट भाई क्या करिए नहीं वो भगवा बेग एक अग्नि है इमें सब चीज जले ई वास्ते बिरो नूर अबार आला साधु संत के में कोई आलोचना तो कौन कौन

0: आगला संत महात्मा भस्म लगावता शरीर के भस्मी ताकि शरीर भूंडो लागे डाडी यूं बंडावता ताकि कुरूप दी के शरीर बिन शरीर ने सजावता कोनी बबूती लगाई ली थी बीरो नूर बीरो तेज कोई छानो थोड़ो यो तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं सूर्य छिपे नहीं बादल छाया रण चढ़े सूरवीर छिपे नहीं दातार छिपे नहीं गर मंगत आया चंचल नार का नैन छिपे नहीं प्रीत छिपे नहीं पूट दिखाया ए योगी का बाना अनेक करो पने कर्म छिपे नहीं बबूत रमाया जाय प्रणाम करण की ओसा धर्म की माँ है दया और धर्म को बाप है संतोष क्यों जन राजा मणि चार अंगल टुकड़ा में संतोष है जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी कोटि के अरब खरब बये तब द्रौपदी होने की चाह जगेगी उदय अस्त लो राज मिले तो तृष्ण अधि की आगे लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी ना भगेगी तो संतोषम परम सुखम गुरु का वचन सदा सिर ऊपर अखे अमर धुन लागी मच्छंदर प्रताप जति गोरख बोले वो जोग लियो बड़भागी भरतरी राजा भूप भयो वैरागी इतना कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ अचानक में कोई आ जाए उसे मेहमान कहते हैं भूख में कुछ मिल जाए उसे पकवान कहते हैं करे किसी निर्धन की मदद उसे धनवान कहते हैं करे जो गौ माता की सेवा वो महादान कहते हैं करता जो माँ बाप की सेवा उसे संतान कहते हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया उसे इंसान कहते हैं आर्ट इज लाइफ
1: जय हो ढोलक वाला पधारो ने ढोलक हाँ ढोलक बजावा होने ढोलक बढ़िया ढोलक बजा पीला बुसरट वाला पधारो सा ढोलक बजाव वास्ते पधारो पीला बुसरट वाला ओ मारसा आओ ढोलक बजाव आओ अशोक जी ढोलक वाला

0: की बोलो दीपकान भगवान की
1: जय हो।
0: बोलो माधव कृष्ण भगवान की
1: जय हो।
0: विश्व गुरु महेश्वर जी महाराज की
1: जय हो।
2: हेलो प्रथम

की जय हो, देव देवपुरी सा महाराज की जय हो, महात्मा नंद जी महाराज की जय हो, स्वामी श्री मेश्वरानंद जी महाराज की जय हो। सत स्वागम कीजिए और तजिए लो भयंकार, भूल सुख परिधिरे अण सत्री संगत रे माय। तप का वर्ष हजार है और सत्री संगत पलये, इनके बराबर पहुंचे नहीं सुखदेव किया विवेक। बोलो सतगुरु भगवान की जय।

0: श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, अलकपुर जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om.
1: Tizenegyszer Om lesz.
0: There are different centers.
1: Vannak különböző központok.

जन शबद जनसीमा होवे मन मंजन मंत्र पे मन मंजन श्री दीप निरंजन सब दुख बन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

कबन प्रभुदीप निरंजन सबदो। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

0: गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम्। ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, भक्तास, डियर वंस, राउंड द वर्ल्ड, दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत, जाडन राजस्थान पाली, फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स, द कॉलेज, एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया, तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स, सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल, ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल, वेयर द students are studying from the nursery school, primary school, middle school, high school and college. In this area of Rajasthan, we have one project and many of you know, it's called Gyan Putra. हम अवर गुरुकुल एडॉप्ट्स द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन एज ए मानस पुत्र। एक तो मानस पुत्र होता है जिसको हम हमारी पुत्र के समान आदर करते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं। और वो ही चाहे आप मानस पुत्र कहो या ज्ञान पुत्र, क्योंकि फादर का, बाप का, माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें, बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव्स द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन, the time the school begins from 1st of July. So now our students are coming. But dear ones, you can see many of our Gyan Putra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar dress, pitambar, like gold. And Bhagavan Krishna used to have pitambar. And you see, pitambar is a color of the flame of the fire. So, the vidyarthi, they are studying, they should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress, and this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, hame to gyanarjan karna hai, paise ki baat nahi karni hai, hum padhenge, paise kamayenge. ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर क्योंकि वो पैसे जो हैं जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी विद्या के अंदर है और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा बड़ा होकर के मेरे माता पिता मेरी समाज और मेरा गाँव मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो ले एक महीना रहा 15 लाख अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं 15 लाख रुपया उठा सकते हैं हम अरे बहुत तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है 15 करोड़ इतो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहाँ हो जाएगा जमा और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो malo mal, so the education, according to the Indian culture, the language, the first language what we call is Sanskriti, Sanskrit. Sanskrit is the mother of all the languages around the world, maybe two, three not. Everywhere there is the words of the Sanskrit language in many, many, many, many countries. And also the culture goes from the Bharat. All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia also were the South Indians, which we call the Aborigines. तो अब्रिजन्स के अंदर वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है साउथ इंडिया का है तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ स्वयंभू शिव आगे वापस वहीं के नहीं इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं सब कुछ है अपने देश के अंदर में और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है चंदन है मेरे देश की मिट्टी तपोभूमि हर ग्राम है हैं? हर बाला है देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है फिर क्या काम है वहां तो आराम है वहां आराम नहीं है सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर Jnanputra is here, they are coming, and we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much. And now, I would like to give the words to our Mahamandaleshwar, Sri Jnaneshwar Puriji Maharaj. ज्ञानेश्वर पूरे ज्ञानेश नाम ज्ञान और ईश्वर दो मिल जाए तो क्या चाहिए और ज्ञान नहीं और ईश्वर मिल जाए तो भी वो डबके क्यों कौन है तो ईश्वर और ज्ञान दोनों का मिलन होता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया समझिए तो नाउ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी And in Sanskrit, and in Croatian, four languages at once speaks. Wohi Mahamandaleshwar ban sakta hai, beta. Four languages, Hindi, Sanskrit, English, Croatian, and maybe someone more. So, hamare Jnanputra ko, he will introduce our Jnanputras and our... हमारा ब्रह्मचारी ऑफ दिस आश्रम सो ज्ञानेश्वर जी आप बच्चों को गिव द चिल्ड्रन दैट काइंड ऑफ सजेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दैट दे गेट इंस्पिरेशन टू स्टडी प्रॉपरली बैठो सदीप नारायण भगवान की
1: जय देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट स्मर कृष्ण भगवान की जय विश्व गुरु महामलेश्वर परम समाश्वर जी सत्य गुरु देव की जय ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति ही शांति ही शांति ही As you all know, our Sri Vishwadeep Gurukul is a school for which for the last, let's say, 20 years is educating the children. Some of them you can see here. It was a Swamiji's project which our dear Vishwaguruji started long back, because education in a country which is so huge population like India, it's very tricky. The system of Gurukuls, which was used from the ancient times of rishis, were still active in the beginning of 19th century, but with the coming of British to consolidate their power, they slowly dismantled this Gurukul system and started the English-based system. But also not for everybody, only for selected people and so on. So the story, what I'm telling you, is from the end of 19th century. And the first school and actually university was actually founded in 1885, so which is quite late in Bombay and so on. So this kind of school, which has very limited approach, left India quite, uneducated. And there were many schools, many children, many villages without any school or any kind of education. We know in Europe we have different system of numbers. Croatia has 5 million people altogether, which is completely, when we put in Indian terms, this is approximately one city. So India has at the moment 1.5 billion people. We invest, we cannot actually comprehend that it's a really huge number, so it means...
0: And Croatia have 50 lakh, sorry.
1: So we cannot comprehend these numbers that in one village like Jadan, they can be at least 5,000 to 10,000 students. In the area of Marwar Junction, where our ashram is situated, there can be at least 50,000 to 60,000, if not more, children who are studying. So now, the problem is how to give education to all these children, because education takes money. Education requires money, education requires books, and so on. So, there are many, of course, the government is doing their best, and there are many NGOs, there are many societies which are helping, and one of societies which Vishwaguruji formed is under the name of Gyanputra, which basically means the sons of the knowledge. So these people, these children, and the families from whom these children belong, they got free education, free books, free many things. Now, it's not a question of only education, because nowadays in our Western-based education, because of so much subjects we have to study, is actually the moral and thinking that is actually removed. Because to teach morality, it's actually the subject which is the base of all education, because first we have education from our parents. But now the parents go to work when you are 3-4 months old and you go to some kindergarten. So in this Gurukul, Swamiji is trying to

ऐसे नहीं चलता है ना। तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरे 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं, पूरे 6 महीना की पढ़ाई कर सकते एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में। अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज, डेली। तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं। हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते हैं, ओपन स्टडी करते हैं, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मांग के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा? 180 तो हो गया, नहीं हुआ? तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना? क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा। और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते? कम से कम कोई तो मार्क्स आए। अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया। अभी है कोई यहाँ 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञान पुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर, एंड वी हैव मेनी आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends. And learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with

Good. Thank you. Thank you and may hunyo. Thank you. And you see the all Vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now only the हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है turn to the camera side. मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. Only the Vidyarthi turn to the don't go close to the फिर चेहरा नहीं दिखेगा बेटा. तू इधर आजा खड़ा हो जा. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस. ओके वी विल सी व्हेन इज देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओम शांति शांति शांति. ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिव उर्वारुकम् एव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीर्मां.

बस अब मेरी तरफ झुक, आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे ये खड़े हो, बैठ जाओ बस, थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, दिख रहे हैं सभी के, नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊंगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

0: ओम शलाकुरुजी महादेव की जय। वादिदेव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: श्रीदीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरुजी सद्गुरुदेव भगवान
1: की जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंद पुरुजी योगराज
1: की जय।
0: नंदीश्वर भगवान
1: की जय।
0: शिव शंकर भोलेनाथ
1: की जय।
0: हनुमा पार्वती पते
1: हर हर महादेव।
2: भगवान

बन इसी मंत्र से होवे मंजन इसी मंत्र से मन मंजन श्री दीप निरंजन सबद जन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

कबन प्रभु दीप निरंजन सब दुख। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

ओम कांत हर त्रिपुनारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदन

ओम शलपुरजी महादेव की देवादिदेव देवेश्वर महादेव सुदीप नारायण भगवान की हिंदू धर्म सम्राट परमान स्वामी श्री माधवानंद गुरुजी सदगुरुदेव भगवान की विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की।

अगामचोनियापारलिप्तां स्वरूपां सुषुदां सदायोगिजप्तम् नमो सर्वव्यापी गुणातीत देवा प्रभुदेवादिजो सदाचरणसेवा विघ्नहरण मंगलकरण धरण परस परपान पार्वती नंदा नमोस्तु दीपा शरण धर्यान जय जय देव दयालु शिव करणस्तु मंगलमु।

सुखसागरमीचनम् सुरनरमुनिस्तव सन्तजना नित्योत्कर्तास्ते सतगुरु।

नुग्रानीच जाने नहीं युग युग के लीटाट ये तन विषकी पेलली गुरु अमृत की खान शिष्य दिए सतगुरु मिले तो भी सस्त जान गुरु मुरति मुख चंद हस्ते बाकने न चकोर अष्टपाद निरकत रहू गुरु चरण कमल की।

आपो से शुक्रासी आपो ध्यानी आपो ज्ञानी आपो योग प्रकाशी आपो देव सब देवी आपो सूर्य प्रकाशी आपो ब्रह्म निर्वाणी आपो चौवर आपो वेदों के ज्ञाता आपो भक्त वासी आपो सतनाम के दाता।

0: की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुरी जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत ऋषि महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। धर्म की
1: जय।
0: धर्म की
1: जय।
0: अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय,
0: आप सब भक्तों की
1: जय,
0: हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
1: महामंडलेश्वर स्वामी अवतार पुरी जी महाराज की जय।

0: की जय।
1: श्री सद्गुरु स्वामी माधवानंद गुरु देव
0: की जय।
1: विश्व गुरु महामंदरेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद गुरु देव
0: की जय।
1: श्री अलकपुरी सिद्ध परंपरा की जय।

भगवान की जय। सिद्धेव पुरुष महादेव की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलका पुरुष महादेव की जय।

0: हरियाम भगवान की जय। श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय हो।
1: जुगा जुगा